हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौके पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क

दो के संबंध है, जादू की बारिश पासवर खजानों के साथ हुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात, नींद से जागकर, जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, चांद से तारों तक, खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रखे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरेट, मेहरापुर, मातिली और जनाब मेहरापुर और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल ना, प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों की खूबसूरती आपको किस तरह से मिलने वाली है और खूबसूरती को कैसे आप जो है ना वो काबू कर सकते हैं, खूबसूरती को कैसे आप लॉक कर सकते हैं, ये बातें इस प्रोग्राम में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। और खूबसूरती भी ऐसी वाली जो कि हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहे और हमेशा आप ग्लो करते रहें, खूबसूरत रहें और खूबसूरतियां बांटते रहें, क्योंकि हर किसी को बताएंगे भाई जान ये कमाल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। तो बिल्कुल सी बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों से जानी है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बतानी भी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है, मुखातिब हो चुके हैं इस प्यारे से प्रोग्राम में और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता नहीं जब मैं एंट्रियां मार दें तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो बिल्कुल आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है। ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद है और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ बिल्कुल इनिशियली बातें करने वाले हैं। तो इनिशियली बातें करेंगे और आप लोगों के साथ साथ बहुत सारी खूबसूरती की बातें भी होने वाली है, चल करेंगे, मजे करेंगे और अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे। और उसके अलावा बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी अंटियां, अमियां, खालें, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करती है ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत प्यारी सी नाद के साथ। तो बहुत प्यारी सी नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जल्दी से वापस आते हैं, आपको बताते हैं आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। सो आप सुन रहे हैं White Age Anti Skin Beauty Show sponsored by White Age Beauty Products Anti Skin Beauty Products। इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

ब्यूटी प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डेज के अंदर किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डेज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या तरीके कार हैं जिन्हें फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है वो तो बता देना। तो बिल्कुल जी, आज की अगर सवाल की बात की जाए तो आज आप मुझे ये बताएंगे या ऐसा कह लें कि आप मुझसे पूछेंगे या फिर मुझे कहेंगे। तो आज टॉपिक कुछ यूं होने वाला है कि आपने ना अगर सिर्फ एक मशवरे होते हैं जो कि हम लोगों को दे रहे होते हैं, मुफ्त में दे रहे होते हैं, कि एक ना आदत होती है वो बस बिला वजह लोगों को मशवरे दे से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं। अगर आप शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करिए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले लोग हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, फेसबुक पर शामिल होते हैं, तो आज थोड़ा सा उनके लिए ऐसा है कि बैड न्यूज है क्योंकि आज फेसबुक पर जो पोस्ट है वो जरा अपलोड नहीं हो सकी थी, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है जिस वजह से। तो आप ऐसा कीजिए, हमें पैनल पर मैसेज कीजिए और इसके साथ साथ मैं कॉल्स तो वैसे ही लूंगी आप लोगों की, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जो कि आप लोगों के लिए है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप खूबसूरतियां हासिल कर रहे हैं। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी कर रहा है। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि हर तरह के प्रोडक्ट्स। अब मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आप लोगों के साथ, तो एक ऐसी बात भी है कि आप लोगों में से बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, सुने हैं, या फिर बहुत से लोगों की ये आदत होती ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम फला प्रोडक्ट नहीं लगाते, हमारे लिए ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए तभी हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग साबुन नहीं लगाते, कुछ लोग फेस वॉश नहीं लगाते, कुछ लोग नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, कुछ लोग फेयरनेस क्रीम लगाने वाले हैं, कुछ लोग एक्ने की वजह से परेशान है। तो हर तरह का प्रोडक्ट भाई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आप हुक्म कीजिए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं बताऊंगी कि वो प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर किस तरह से काम करेगा और किस तरह आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगा। तो खूबसूरत रहेंगे, खूबसूरतियां हासिल करेंगे और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। और साथ ही साथ शामिल प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए अगर एक मशवरा आप मुझे देना चाहें, एक मशवरा मुफ्त वाला मशवरा, तो ऐसा कौन सा मशवरा होगा जो कि आप लोगों को लगता है कि इस मशवरे की सिद्धरा को जरूरत है। हाँ जी, वैसे तो मशवरों की जरूरत होती है हर एक इंसान को, लेकिन मशवरा जो है वो जरा काम का और ढंग का होना चाहिए। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप हमें ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल जी आपके मैसेजेस, आपकी प्यारी प्यारी बातें जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है। ओके जी, सो इस प्रोग्राम में यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं 8881 पर और आपकी कॉल्स भी, लाइव कॉल्स भी बिल्कुल जी प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली है। तो बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और लाइव कॉलिंग नंबर जो है वो मैं आप लोगों को जो है ना वो

0: 2 बजे के बाद बताऊंगी, क्योंकि कॉल जो है वो 2 बजे के बाद ही ली जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम है गोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा आप कैसी हैं और हाउ आर यू, हम सारा काम छोड़कर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है बाजी, हम आपकी खातिर नींद को छोड़ते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ते, हमें शीला कुल का गाना सुनाइए दिल तो की नई छड़ी, चाय याद करने थोड़ो हो जाए बिल्कुल जी, वो गाना तो आखिर बुधराई नासी प्यारा भात आंजू मोहब्बत आए तमाम निंड रखी जगवान साहित्य रखी करे तासन प्रोग्राम बुधन आयो तुम्हारा मोहब्बत आए एडा प्यारा प्यारा मैसेज करना है सचम भला लगना है। ओके जी, सो तां अगर मुखे को मशरो दियन चाहियो तो केड़ो मशरो जको ताके लगे तो तही मशरो सदरा के दियन घुलजे। अच्छा डेरी हमारे साथ और ये सऊ डेरी है फ्राम नवाब शाह कहते हैं मोलाल सलामत अदी शो तुम्हारा बेहतरीन है, थैंक यू सो मच प्यारा भा तुम मोहब्बत है एक मैसेज के तुम दफा शेयर कर छो है उन भी मोहब्बत हूँ वरी टो दफो भी तुम मैसेज अची वो है सेम सो उन भी मोहब्बत हूँ मायरा असो प्रोग्राम बुधे पी मायरा तु भी मोहब्बत है प्रोग्राम में अगर तुम्हारा मौजूद है तो असा बुधाइंदा हलो पेनल थी तुम मैसेज कहीं कॉल्स कहना अज कॉमेंट्स वो थोड़ा सिस्टम है ना वो थोड़ा ऑफ है छो तो कहीं कहीं ये टेक्निकल इशूज भी अची वा ये टेक्निकल इशूज भी असि जिंदगी जो हिस्सो है सो का गाल का। ओके जी, मजे करते हैं प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने लगे हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारे पास आ चुके हैं उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: GA FM 88 Network, सिंध की आवाज।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास, चेहरे के दाग धब्बे खेल महा से और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, चेहरे की जल्द को दे नया निखार।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जी सकरंट नवाब शाते, सकरंट नवाब शाते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्त तलब कई वन थी। जी एफ एम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फौरन व्हाट्सएप जरिए मोकलें। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सखर शिकारपुर रोड ते
1: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
0: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
1: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो
0: सैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
1: रिहायशी प्लॉट्स 80, 120 150 आई 200 गज जा
0: आई कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज आई 600 गज
1: हिते तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतों
0: साफ मिठो पानी
1: बिजली गैस
0: 24 कलाक सिक्योरिटी
1: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
0: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो
1: अजी पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
0: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
1: कॉन्टेक्ट
0: 03009317252
1: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
0: तमाचे महफूज मुस्तकबिल आई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतर

0: सखर के हो
1: तो आवाज भी सखर की है, सुनते रहो
0: CFM 88। खबर सियासी हुजे या समाजी,
2: मजहबी हुजे या सरकारी,
0: खबर शहर जी हुजे या गोठ जी,
2: सखर डिवीजन जी आवाम जो खबरों
0: जी सखर बुलेटिन में
2: रोजाना रात 9-10
0: सिंध जो आवाज। कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी सर, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं CFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आए हाय क्या बात है, दोनों ही प्रोडक्ट्स का अगर जिक्र किया जाए तो भाई दोनों एक से बढ़कर एक है. अगर मान ले ये बात कि हम अगर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं तो ये बात आप लोगों को जरा वाजे करते चलें कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनमें आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है. और हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है. नो नेवर. क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी में आए हाय इतने जबरदस्त तरीके से इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है जाएगा. हर तरह से नेचुरल अजा से तैयार किए गए हैं और हर तरह से आगे तो व्हाइट प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी सोप अवेलेबल है, व्हाइट एज फेस वॉश अवेलेबल है, व्हाइट एज लवली क्रीम अवेलेबल है, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल है एंड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है. उसके अलावा व्हाइट एज का लोशन भी मौजूद है एंड व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है. और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स तो आप लोग इजीली से ना वो परचेज कर सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर. और वहां से जाकर जब आप परचेज करेंगे तो उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा. एक और मजे की बात बताते चलो कि अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि ये बन रहा है कि आपके करीबी जनरल स्टोर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए. अगर नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपके नंबर मौजूद है जिसके ऊपर आप रابطہ करेंगे, कॉल करेंगे प्रॉपर या फिर आप एक छोटा सा मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि वो अवेलेबल करा सके. उन्हें अपना जो है ना वो एरिया बताइएगा, आप प्रोग्राम सुनते हैं और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये उन्हें बताइएगा. अगर आप कॉल करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है तो आप एक छोटा सा मैसेज छोड़ सकते हैं. तो नंबर 15 इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा. और इसी के साथ साथ जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि सिद्रा ये तो बताएं कि इस्तेमाल करें तो ये हमें सारी चीजें जो ना वो मिलेगी, तो एक और मजे की बात है कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगी बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगी. वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और मिल्क मौजूद है. जैसे आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन को गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसान और असरात से आपकी स्किन को पाक रखती है, झुर्रियां हो, दाग धब्बे हो, इन सब चीजों को खत्म करती है. और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई ना मजे की बात. बिल्कुल जी, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हजरात और खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद आपको मिलेगा ऐसा खूबसूरत सा निखार जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे. उसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन साथ में आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ और आप मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप लगाइएगा व्हाइट एज ब्यूटी सोप. अगर आप ऐसा सीन है कि कोई भी क्रीम नहीं लगाते हैं, आप थोड़ा सा क्रीमों से दूर भागते हैं तो आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि साबुन तो हर किसी की एक बेसिक सी नीड होती है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है. तो व्हाइट एज ब्यूटी सोप का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है. और उसके अलावा अगर आप सोप नहीं लगाते, आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो भाई जान आपके पास मौजूद है व्हाइट एज का विटामिन सी फेस वॉश जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए आपकी स्किन ग्लो में आ जाती है. और इतना क्रीमी फेस वॉश ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितनी अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं. तो साबुन भी अवेलेबल है, फेस वॉश भी अवेलेबल है, जो चीज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अवेलेबल है. इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी को लेकर परेशान है, तव्हांजे चेहरे ते दाणा ॾाढा अची विया आहिनि, दाणा तव्हांखे नथा छॾनि, मौजूद है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ही नालो तुम्हें याद रखो, इन नाले की अगर तुम्हें याद रखना तो तुम्हें चेहरे जैसे की एक्नी ना उनके खत्म करने के लिए सफा आसान फार्मूलो है. सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है जो आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार थियल है, जिनके अंदर ना फुल जड़ी बूटियों एड थियल है. अगर तुम यो सोचो था तो केमिकल कोई भी इनमें एड थियल हों तो ना बाबा, सब जड़ी बूटियों में एड थियल है. ट्री ट्री ऑयल है, एलोवेरा है, मिंट है, उनके अलावा नीम है,
के थोड़ा अहिड़ा सारा इन जे अंदर चीजूं एड कई वयूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे दाणा हुजनि या फिर दाणे जा निशान हुजनि या वरी तव्हांजी स्किन ते ब्लैक हेड्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, एक्नी पोर्ट्स आहिनि या वरी एक्स्ट्रा ऑयल आहे, उन्हनि सभिनी चीजुनि खे ख़तम करे तव्हांजी स्किन खे क्लियर बणाईंदो ऐं तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बणाईंदो. सो ही आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जंहिंखे तव्हां राति जे टाइम इस्तेमाल करे सघो था. यानी कि सुम्हण खां पहिरियां तव्हां छा कंदा, पंहिंजो फेस वॉश कंदा, वाइटिश साबुण लॻायो या फेस वॉश लॻायो, अच्छे तरीक़े सां पंहिंजो फेस वॉश कयो, क्लीन कयो, उन खां पोइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे पंहिंजी स्किन ते अप्लाई कयो. तव्हांजे चहिरे जा दाणा हुजनि, निशानात हुजनि या फिर कोई धक जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, इहे बि अगरि निशान तव्हांजे चहिरे ते मौजूदु आहिनि उहे बि ख़तम थी वेंदा. ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजी स्किन खे सफ़ा क्लियर बणाईंदो, ख़ूबसूरत बणाईंदो ऐं शाइनी बणाईंदो. उन खां अलावा असां वटि रहिजे थो बाबा हिकिड़ो प्रोडक्ट जंहिंजो नालो आहे वाइटिश लवली क्रीम. ऐं वाइटिश लवली क्रीम जेका तव्हां ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ही उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके भई फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा आहिनि या फिर उन्हनि खे इहो आहे त असां उमिरि असांजी नंढी आहे, असां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयूं, अञा तव्हांजी उमिरि नाहे थी, त तव्हां वाइटिश लवली क्रीम इस्तेमालु करे सघो था छो त हिन जे अंदर

टैब आ रहे हैं आपके मैसेजेस हैं, जल्दी से आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की कॉल्स भी पिक करनी है मैंने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं स्वीटी, आप कैसी हैं? हमारी निदा अली हमारे साथ मौजूद और कहती हैं, फॉर यू मैं और तुम जिस दिन मिलेंगे वो दिन वक्त की पेशानी पर चमकता हुआ एक रोशन सितारा होगा, वो लम्हा जब तुम सामने होगी और मैं अपने सब लफ्ज भूल जाऊंगी, दिल की धड़कन ही मेरा तावर बन जाएगी, तारुफ बन जाएगी और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया, वो दिन उस सदी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और कहती तुम्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, बिल्कुल अच्छी हो, चंदा जाने समझ गई ना। बिल्कुल मैं समझ गई। और अलीजा भी आके साथ हमारा शो सुन रही है, तो अलीजा को भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, दोनों परियों का आप हमारे प्रोग्राम की रौनकें हैं जी, तो खुश आमदीद। अच्छा ठूफ टूसल से मुलाई मुजाहिद बुजार हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, कितने सिडो जी, कैसी हैं आप? उम्मीद के मेरी तरह ओके, एकदम झकास होंगे जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम झकास से लस्सी का गिलास। ठूफ चूसल से मुलाई मुजाहिद बोजार के से डोजी, टॉपिक आपके लिए मशरा ये है कि हंसती रहा करें, हंसते हुए आप बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये मशरा मैं आपका जो इनाम संभाल के रखती हूँ अपने पास। और ये हमारे साथ ही जिंदगी देने वाले सुन सॉन्ग प्ले कीजिएगा प्लीज, शहबाज जमाली नवाब शाह जी हमारे साथ मौजूद है। ओके मैं कोशिश करती हूँ, आपका गाना मुझे मिल गया तो लगा देंगे। और एक ही मैसेज को आपने 4-5 मरतबा शेयर कर दिया है, ओके जी बहुत शुक्रिया। इमरान अली कहते हैं बाजी टॉपिक है आप अपने, अच्छा चलें ये तो आपने थोड़ी सी बात अच्छी वाली कर दी है, या पता नहीं मुझे समझ नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कहते हैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ जिंदा तो हूँ मगर अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपने ख्वाबों के लिए। क्या बात है इमरान भाई, आपको वेलकम कहा जाता है, ख्वाबों के लिए जिंदा रहना भी अच्छी बात होती है। और ये हमारे साथ है मेरी छोटी बहन कुलसुम भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, और मेरे माँ बाप भी आपका शो सुन रहे हैं। शहबाज जमाली नवाब शाह से हमारे साथ गाना आपने बोला है, बिल्कुल जी आपका गाना लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और मुझे ये बताइए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नवाब शाह में मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि व्हाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए, जोन सा भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लगाइए, और फिर आप मुझे बताइए क्या वो रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। और साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595।

ओके जी, हमारे साथ मौजूद है साइमा मीर। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मक्खन जैसी आज है। सिद्रो, आप कैसी हैं? सेहत तबीयत कैसी है? शो मस्त बेस्ट है। सलाम अम्मी जान और वरियाम भाई को। ओके जी, ओके। और इरम हमारे साथ कहती है, ओ मेरी दिलबर दोस्त, मैं आपका रोजाना शो सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल आपको SMS करने में थोड़ी सुस्त हो गई हूँ। कोई बात नहीं, बस बता दिया करें कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साइमा मीर कहती है, टॉपिक RJ

ओके जी, सो बिल्कुल जी बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर एंजॉय करें. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी, जो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी के साथ साथ आप हमें 888-1 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और आज आप कोई सा भी मशवरा जो कि आप मुझे देना चाहते हैं वो दे रहे हैं. और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपकी कॉल हम पिक करेंगे. न्यूज ब्रेक आने वाली है, उसके बाद जैसे ही हम दोबारा आप लोगों के साथ मुखातिब होने वाले हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल्स होंगी और आप लोगों के साथ साथ कॉल पर चिटचैट होने वाली है. तो आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0333-22-13-22-88. अच्छा निदा, मैं बताती हूँ तो मैं बताती हूँ, सब्र करो जरा. अच्छा मेरी ये आदत है ना कि मैं बार बार कहती हूँ कि पोस्ट को लाइक और शेयर करो. ये मैंने इतनी दफा ना कंट्रोल किया है कि मैं मतलब बोलने ही वाली हूँ कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर. हम रोजाना अगर जो भी चीजें बोल रहे होते ना तो ऐसे बस मैं बोल देती हूँ. तो आज भी मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की कंट्रोल की, लेकिन ये हो गया मुझसे कि मैं बोल ही गई कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर. चलिए आप ऐसा करें कि आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए. नंबर है 03-15-799-0595. नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, उन्हें बताइए कि आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके एरिया में नहीं मिल रहे और साथ साथ जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जल्दी से अवेलेबल कराइए. न्यूज ब्रेक आ रही है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं. सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक.

0: आर्बुटीन, फोलिक एसिड और ग्लूटाथायोन से भरपूर ये क्रीम रात भर जो है ना आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काम करती है, ताकि आपकी जल्द जो है वो चमकदार रहे, डार्क स्पॉट्स वो खत्म हो जाए, हाइपर पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाए और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए, और उसके साथ साथ आपकी जल्द को जो है ना गहराई से मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है। स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की साख को बेहतर करती है, नरम बनाती है आपकी स्किन को, खूबसूरत जल्द आपको फराहम करती है। और जनाब सबसे मजे की बात कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है। तो जिन लोगों की स्किन जो है ना वो थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप सी होती है और आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो इसी वजह से कि आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपकी स्किन खराब हो जाती है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप बाकायदगी से कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया प्रोडक्ट है। और जनाब पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, वो भी गारंटी के साथ, और उसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये बाहर के ममालकात में भी आपको मिल रही है। और एक मजे की बात है कि जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि विटामिन ई बीट्स इसके अंदर ऐड किए गए, तो विटामिन ई बीट्स जो होते हैं ना वो इतना यानी कि उसके जो फायदे होते हैं ना वो इतने ज्यादा होते हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और एक मजे की बात है कि विटामिन ई बीट्स जो है ना वो पाकिस्तान में दो तीन प्रोडक्ट्स ही हैं जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है और उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आ जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए भी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटनिंग नाइट क्रीम है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट के टाइम, और उसके अलावा आप साथ में इस्तेमाल करेंगे डी स्किन फेस वॉश, और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लींस करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो लवली बना देता है। इतना खूबसूरत इतना लविंग प्रोडक्ट है ना कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप कितनी अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतना क्रीमी है, इतना मतलब इसका टेक्सचर मस्त है ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि आप वाकई कोई अच्छा वाला एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप डी स्किन का फेस वॉश लगा कर देखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा कर देखिएगा, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि अगर आप सो रहे हैं सोने से पहले अगर आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लिया और साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके फिर आपने जाहिर सी बातें क्रीम लगानी है, तो जब आप ये तरीकेकार फॉलो करेंगे ना तो आप यकीन जाने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर से ट्राई करके देखिएगा, आप खूबसूरत ही खूबसूरत होते जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, इसी पैनल पर आपके मैसेजेस हैं, आपकी कॉल्स का सेगमेंट स्टार्ट किया जा रहा है, तो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88। तो ये वाली फर्स्ट कॉल पिक करते हैं, देखते हैं कौन मौजूद है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। किस अगर मौजूद है
1: अभी कुर्बान अली साहब के दुकान पर आज कॉल कर।
0: ओके कुर्बान भाई छाला तांजो खुश आयो।
1: वाले जी शुक्र अल्लाह का इतना बेनर जो
0: जाओ। ओके प्रोग्राम बदो पिया।
1: बिल्कुल बदो पिया।
0: टॉपिक की छा चमदा
1: टॉपिक आज नशीला पर एक को शिकायत दे रहा हूं जो वदो पाता है नशीला नशीला पहले भी जब बताया जाओ जो लगा के
0: मुख्य बधायो तो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया आवाज शुरू कर जी तुम जो नालो त अचन घुर्जे न तव्हांखे जॾहिं इस्तेमाल कयो पिया त ओके आवाज़ में थोरो नेटवर्क में थोरो मसलो आहे, तव्हांजो आवाज़ सही तरीक़े सां न पियो अचे, उन जॻह ते बीह करे कॉल कयो जिते तव्हांजो नेटवर्क क्लियर ईंदो हुजे, जो तव्हांजो आवाज़ हिते सफ़ा साफ़ सुथरो अचे। ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 03-22-13-22-88। नेक्स्ट कॉल जी तरफ़ अचूं था, ॾिसूं नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कहिड़े सां सां गॾु मौजूदु
1: आहे?
0: ओके मोहम्मद अज़ीज़ भाउ ख़ुशि आहियो। ओके अलहमदुलिल्लाह खैर लॻो पिया। प्रोग्राम ॿुधो पिया पहिरां भा कहिड़ो प्रोग्राम आहे, नालो अचे थो? हा न

0: जवानी ते स्टार्ट थी हुआ ना ओके प्रोग्राम जो नालो आ वाइट ए शे एंड डी स्किन ब्यूटी शो हाओ आवाज कट जियो ता ओके बुदायो ताजो प्रोग्राम बुदो पे आया कौन अच्छा त मखे यो बुदायो त टॉपिक ते तमा छा चोंदा दोस्तन की याद कंदा ओके ओके गाल तो समझ में ना आई पर ठीक अलाई जो मतलब यो मूं नोट कयो आ त एकरे नी अगर कॉल सही अचे थी त नेक्स्ट डे तवा जो कॉल सके न थोड़ो डिस्टर्ब थी वने चो सो असा नेक्स्ट कॉल वठना सी दिसु था नेक्स्ट कॉलर के असा सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो आवाज कट जी दो हेलो हाँ आवाज कट जी दो सफा हाल आई छो हाँ हानी अचे तो आवाज खेर तां बुधायो ठीक आयो अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह प्रोग्राम बुधो पिया टॉपिक ते बिल्कुल यही ही गाल आए टॉपिक ते छा चवंदो नगा लाइंदो चलो मुखे बुधा केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया कौन मिली अच्छा चलो सही अच्छा आयरम थैंक यू सो मच केड़ जी हाँ चिच मिच के केर समझे ला ता समझो पे तो बुधाई अलाए केड़ो मसलो आयो कड़ी नी कॉल सही ता अचन बेनी कॉल्स थोड़ो मसलो कन थियो इन चीज के दिसना सी फिगर आउट कना सी छा मसलो आए आई बिल्कुल सी प्रोग्राम तो हम बदु पे वाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वने थो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जितावन सा इकली नेक्स्ट कॉल वठु ता दिसु ता छा खबर ही सही है से कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम केरस सगर मौजूद आ
1: कहां सगर मौजूद आ अमजद ने विस्तरो
0: ओके ओके कितना कॉल कई अमजद बिल्कुल यही गाल आहे मुखे बुधाए प्रोग्राम बुधो पिया कॉल की नजर लगी आवाज भी कटजे तो हाँ केड़न दोस्तन की याद कंदा अच्छा वाइट एज प्रोडक्ट इस्तेमाल कया था भैया डी स्किन जा बुधायो था हाल अहिवाल तो ॾियो अलाए छा चयो ओके ओके थैंक यू सो मच हाँ जी सो कॉल सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कॉलर्स क्या कह रहे हैं और ये कॉल के साथ क्या मसला है और चलिए जी हम कॉल्स तो लेंगे लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं और आप क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332132288 कॉल करें तो किसी ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लग रहा हो कि यहां पर नेटवर्क फुल आता है ओके जी सो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सिरुजानी क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूं नाइस शो एंड आई शेला गुल का सॉन्ग मु दिल तो के दई छड़ी सडो मु दिल तो के दई छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी लुबना हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी लुबी आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और उनका अलावा हमारे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो डियर डियर सफा भलिया ता बुधाए की आयो फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद करते हैं आपको फजीला सिंधी उनका अलावा हमारे साथ जी यहाँ पर मौजूद है इरम क्या कहती हैं? हाँ जी, वो अभी तक मेरी दोस्त हैं और बहुत अच्छी लड़की है वो, माशाल्लाह। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ साइमा मीर, कहती हैं कि वही तो आज देखो ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है, अगर कॉल्स भी सही चल जाती प्रोग्राम में तब तो ज्यादा ही अच्छा होता, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और उसके अलावा क्या कहती हैं आगे, आपने मुझे दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया साइमा मीर, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमारा शो सुन रहे हैं, मोरो से ओके जी आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। और इमरान अली बिरोही भाई कहते हैं कि सब चेहरा सब चेहरा पढ़ा ना कर ए जिंदगी, कुछ मानुन सा मोहब्बत भी आहे। हाँ, अगर वरी खबर पहचान जे असलियत जी पोवा के रोक दींदो आहे। चले बहुत बढ़िया, खुश रहे और साथ साथ वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहे। ओके जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने बातें, उसके बाद जो है ना जल्दी से वापस आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ गई, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
2: जी एस सखर FM 88
3: सखर की आवाज। तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहे था जिते हो जे तहफुस जदी सहूलतों आई मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोय भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया जाता है. इसलिए बताया जाता है ताकि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी समाते हैं, जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, उनको ये पता हो कि जब आप इस्तेमाल करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को अंदाजा हो कि आप जो चीज परचेज करने जा रहे हैं तो वो चीज आप क्यों परचेज करने जा रहे हैं. अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हम अगर चीजें परचेज करने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हम जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आप लोगों में ये अवेयरनेस लाने के लिए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पहले से उसके बारे में पता हो, तो बिल्कुल उन्हीं चीजों के बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. ओके, सो आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है यहाँ पर. जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. और इसी के साथ साथ

मस्ती करेंगे और प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल हमें अभी भी सुनाया स्टार्ट किया होगा, या फिर जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर मौजूद हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खास करके उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो लोग ज्यादातर ऐसा होता है ना कि वो सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई, इसे सारी स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को जो है ना वो ये बता दी चलो कि जब आप सेंसिटिव स्किन होने की वजह से परेशान होते हैं ना कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है, आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या ही जाता है। उसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, और जनाब डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, डी स्किन फेस वॉश भी ऑल स्किन टाइप के लिए, और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत बना देता है कुल मिलाए कटे सटे। ओके सो अभी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटनिंग नाइट फार्मूला है, नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ देखेंगे, जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। ना मिलने की सूरत में डायल कीजिएगा 03 1579905 9

क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने यहाँ पर सुना. एक और प्यारी सी आवाज जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, अली जफर की आवाज में ये गाना होने वाला है चोरी चोरी, और इस गाने की फरमाइश हमें कर दी हमारी सायमा मीर ने, तो हम ये गाना सुनेंगे.

और गाने सुनेंगे आप लोगों के मैसेजेस हैं, जरा उनकी जाने भी आ जाती हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं तो देखते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर फजीला सिंधी हमें सुन रही हैं, कहती हैं डियर स्वीटी आप कब से शो कर रही हैं, मुझे शायद आज ये तीसरा शो होगा। हाँ जी, और उसके अलावा कहती हैं ओए प्यारी आपका तो पता नहीं बाकी आपकी आवाज बड़ी मीठी है। थैंक यू, शुक्रिया, कम समीदा।

0: शर्म थे क्यों।
1: ओके जी, निदा कहती है कि क्या था मशवरा बताए ना, ये कहूंगी कि आप जैसी हैं वैसी ही रहिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसा होता है ना कि जो तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो लोग जरा अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। और उनके अलावा साइमा मीर कहती है ख्वाब में तो अलाए केतरा भेरावर्ती आए वाइटेश लवली क्रीम, बाकी जाग में अलाए कदे वटनासी, इंशाल्लाह वटनासी तो सफा दिल जाएगा जी ये लाड़काना। ओके जी, ओके लाड़काना, आप आइएगा तो परचेज कीजिएगा, क्योंकि आप परचेज करेंगी, इस्तेमाल करेंगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा वाला प्रोडक्ट है, तो इस्तेमाल कीजिएगा। और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई कहते हैं कि शाह इंतजार करनी मोहब्बत आहे या उन या वो भी पाने सा जुल्म आहे अलाई या चीज समझ में नहीं दिया। ये बातें मुझे मत पूछा करे। और सैमा कहती है कि ना बा आसान भी

यो कौन समझो सी हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल मुख शावस आए ओके थैंक यू. अच्छा इरम कहती हैं आपकी जवाब है ओके जी ओके इंशाल्लाह इससे तो पहले ही होगा मुझे ये लग रहा है आप टेंशन मत लिया करें. और शोनी कहती हैं आपकी जान में भी आ गई आप के शो में अभी अभी उठी हूँ नींद से और क्या कहती हैं कि नींद से उठकर ही आपके शो में आ गई हूँ. ओके जी और ये मैंने एक स्पेशल सा गाना लगाया है ये स्पेशल सा गाना है जो कि मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि हम अपने प्रोग्राम में सुनेंगे. आज मैंने ये सोचा कि मौका भी है दस्तूर भी है उस गाने को सुन लेते हैं. ये मेरा फेवरेट गाना है

बहुत ही प्यारा गाना जो कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और ये गाना पता नहीं क्यों मेरा बहुत फेवरेट है, और ये गाना मैंने आज पहली मरतबा प्रोग्राम में लगाया। और इसी के साथ साथ एक और गाना जिको ही गानो आए ही असानी प्रोग्राम जो लास्ट ब्रेक थे अनवारो है आई तमाम सेकंड मौजूद आए प्रोग्राम आए जना व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं।

हमारे साथ यहाँ पर हैं मौजूद लुबना के लिए किसी दो मेरी प्यारी कजिन्स भी आपका शो सुन रही हैं। मेरे साथ हैं जनाब और मौजूद हैं महक, फलक, अरबेश और एक लड़की और भी है, और एक और लड़की का नाम क्यों नहीं लिखा और कहती हैं कि मेरे साथ जो मेरी कजिन्स बैठी है ना, तो वो आपको पूछ रही हैं कि ये उर्दू है या सिंधी है, वो आपको उर्दू स्पीकिंग समझ रहे हैं। अच्छा न बाबा, सिंधी आयो, सिंधी मानू।

डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आपके लिए अवेलेबल है. व्हाइटेश ब्यूटी सोप आपको मिल रहा है, व्हाइटेश फेस वॉश आपको मिल रहा है, एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है. तो इतने सारे अच्छे अच्छे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे. और खूबसूरती भी ऐसी वैसी नहीं कि बस आप इस्तेमाल करते रहें तो आप खूबसूरत रहेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि आपको जो खूबसूरती मिलेगी वो हमेशा आपके साथ रहेगी. तो खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियां बांटते रहिए, लोगों को बताइए कि मार्केट में व्हाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. इसी के साथ साथ डायल कीजिएगा 03-15-799-0595 और मुझे दीजिए इजाजत. वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थियण वारी है सुभाने वाले प्रोग्राम में. जी जी बिल्कुल, मैं कल लाजमी आऊंगी. और साइमन मीर आपका बहुत शुक्रिया, और शहबाज भाई आपका बहुत शुक्रिया. और अगर आपके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में तो जरा माजरत कर देते. और सुभाणे जी तव्हां जा गाना हलाईंदासीं, सुभाणे तव्हां सां गॾु हूंदासीं 1 बजे खां 3 बजे ताईं. तव्हांजो असांजो साथ रहण वारो आहे. सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे, कोई लफ़्ज़ ॻाल्हाए हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे, उन लाइ माज़रत कयूं था. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू.

मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करणु चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे हिकु तरफ़ खां मुअतल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति भारत जे मौक़िफ़ खे कंहिं बि फोरम ते पज़ीराई नाहे मिली। सिंध तास माहिदे खे ॿिन्ही मुल्कनि तस्लीम कयो हो। पाकिस्तान पाणीअ में रंडक खे क़बूल न कंदो। आबदा हरमुज बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। आबदा हरमुज बाबति गॾियल मुशावरत सां फ़ैसिला करण ते इतफ़ाक़। ईरानी नायब परदेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी ईरानी वफ़द जी क़यादत कई। ओमान जो नायब परदेही वज़ीर वफ़द सां गॾु ॻाल्हियुनि में शरीक थियो। काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त गॾिजाणीअ में इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे तहत सामूंडी रियासतुनि जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं हक़नि जी रोशनीअ में आबदा हरमुज जे मुस्तक़बिल ऐं इंतिज़ाम बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान ऐं अमेरिका जो हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़। अमेरिकी मीडिया जी दावा। अमेरिकी मीडिया मूजिबि तहरान हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो महिवर आबना हरमुज़ हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल माहिदे जी भेनेकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबि ख़िते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। माहिदे ते नेकनीयतीअ सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भेनेकड़ीअ ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसिलाइता क़दम खया वेंदा। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त कतर में मौजूदु ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियणु घुरिजनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदुनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्तु फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। कराची जे कारोबारी मर्कज़ गुल प्लाज़ा खे लॻल बाहि हादसो करार। पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुल प्लाज़ा बाबति अदालती जांच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ऐं संदसि 11 सालनि जे पुटु हुज़ैफ़ा खे जवाबदार तौरु नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस

नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिबि गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि 72 माण्हू सरी फोत थिया। हिन वक़्तु ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसी 2024 जे पेपर जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। कैरपुर जे कच्चे में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो, 2 ॼणा क़त्ल, 1 ज़ख़्मी। पुलो थाणे जे अध ॻोठ कोराई में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन ऐं कोराड़ो कोराई मारिजी वियो। मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थियो। धुरिन में छिकताण वधी वई। सिंध में पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। कुंडरी, दोदापुर ऐं मीरपुर बठोरो में धरणा। नवीसर खां पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ निकितल आबादगारनि जो पैदल मार्च कुंडरी पहुतो। आबाशी ऑफिस अॻियां धरणो। दोदापुर में बि आबादगारनि पारां पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर बठोरो में आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ सिजाव रोड ते धरणो हुयो। पाणीअ जी खोट ख़तमु करण जो मुतालबो। लाड़काण में 4 ॾींहं अॻु राइस कैनाल में उॾी वियल नौजवान जो लाश न मिलियो। वारसनि जो धरणो। लोहर कॉलोनी वासी नौजवान मुज़वर शेख जे वारसनि औरतुनि समेत रसूलाबाद रोड ते धरणो हुयो। नौजवान जे भाउ वहीद शेख जो चवण आहे त 4 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। रेस्क्यू अमलो भाउ जो लाश हथ न करे सघियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलें। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लगती है मतली के साथ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सर में दर्द नकाहत का एहसास होता है, गश्ती की कैफियत तारी होने लगती है और ऐसे सूरत हाल में जो मुतासिरा फर्द है इसे फौरन ठंडी या सायादार जगह पर ले जाना चाहिए जहां ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में हो, इसलिए कि हमारे जिस्म की बनावट में सबसे अहम किरदार सेल्स यानी खुलियों का है जिन्हें जिंदा रहने के लिए गजा और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब फिजा में ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार मौजूद नहीं होती तो सेल्स दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते और इसके नेगेटिव असरात जो है मुजिर असरात हमारे जिस्म पर पड़ते हैं और ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले खुलियात ही मुतासिर होते हैं जिसके नतीजे में जिस्म में हयातीन यानी विटामिन्स की कमी हो जाती है, पसीना बनाने वाले गुदूद का तवाजुन बिगड़ जाता है और इसके अलावा जिस्म में पानी और नमकियात की भी कमी हो जाती है। मुतासिरा फर्द को ठंडी जगह पर लाने के बाद उसके ठंडे पानी में जो कपड़ा या तौलिया या रुमाल वगैरह भिगो कर उसके सर पे और सीने पर रखें, उसे कोई ठंडा मशरूब पिलाएं, इस तरह उसकी तबीयत जल्द संभल जाएगी। और शदीद गर्मी में हमें चाहिए ठंडी सायादार जगह पर रहे, बेमकसद तो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो तो अपने सर को किसी कपड़े से, कैप से, टोपी से ढाँप कर कवर कर लें। इस मौसम में हमेशा हल्के रंग के क्लॉथ्स पहनें, लू से बचने के लिए घरों में, अपने महलों में, अपने इलाके में जहां आपकी रिहाइश है ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाइए ताकि फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार जो है वो कम हो जाए, कम रहे, क्योंकि दरख्त अपनी गिजा तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और गैस खारिज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये इंसानी जरूरियात पूरी करने के अलावा फिजा में ओजोन की तह भी बनाती है जो न सिर्फ हमें सूरज की बालाई बनफशी शुआओं से महफूज रखती है बल्कि लू और दीगर अमराज से भी बचाती है। और सूरज की जो बनफशी शुआएं होती है ना ये बहुत मुजिर होती है, ऑक्सीजन हमारी फिजा को ठंडा रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड जमीन का दर्जा हरारत मजीद गर्म कर देती है और गर्मी के मौसम में हमें कोशिश ये करनी चाहिए।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफां एक अहम और शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: जीएफएम 90.8

0: रोजाना सुबह सत लगी 3 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आज शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद मरीज जो मुआइनो कर रहे है हर किस्म के आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन कब्ज तेजाबियत गुर्दन की पथरी बवासीर हाजमे की खराबी बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीज जो इलाज कर रो प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान रोजाना सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर राब्ते जे लाए 03-26-22-00-440
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

किंग थी, सबने अपनी अपनी राय हमको बताई और इस राय से जो है नतीजा ये निकला कि मोबाइल ने करीब भी किया है, दूर भी किया है, लेकिन मोस्टली जो अगर कोई बीमार होता है फोन पे ही उसकी तबीयत पूछ ली जाती है। और बड़े शहरों में तो एक चीज और भी मैंने नोटिस की है कि डेथ के अफसोस भी अब फोन पे होना स्टार्ट हो गया है। तो जनाब जो इंसानों की जो जगह होती है ना वो इंसानों से

बन नहीं पा रहे होते तो हम एक मिस्टेक की वजह से उस पूरे पूरे रिश्ते को रिजेक्ट कर रहे होते। हर शख्स का अपना अपना मिजाज होता है। अगर कोई आपका हम मिजाज नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% गलत है या खराब है। हाँ, उसकी एक गलत आदत या एक गलत बात की वजह से आप किसी की पूरी पर्सनैलिटी को डिसऑन नहीं कर सकते। तो एक दूसरे के साथ अगर आपने

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कर वने थो। GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। GFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आए जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आए, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज। पहचो शहर पहचो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज।
0: GFM 90.8

सुध समा वारे पाकी वजीर तला तरण अफगानिस्तान में पाक फौजी कैल ऑपरेशन जीबीटी जारी करे छी। कराची में दहशतगर्द हमले बाद पाकिस्तान दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई कई वही। भारतीय हामी दहशतगर्द तंजीम जमायत अल अहरार की पक्तिया पक्तिका ए किन्नड़ में कैंपस के निशानो बनाया वो। पाक फौज अफगानिस्तान में कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द मारजी वह हुआ, केतरा ही जख्मी थे। दहशतगर्द जहा हथियार ए बारूदी मवाद भी तबाह थी। कराची में दहशतगर्द हमले से पाकिस्तान जो अफगानिस्तान आडो सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर जी परडेही ऑफिस तलफी दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। परडेही ऑफिस मूजिब कराची में दहशतगर्द हमले में साबित थो अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमाल थी रही है।

पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करणु चाहे थो। वज़ीर-ए-आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी पकाउ जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सुध समाव वारे फाकी वज़ीर ताला तारण चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे मुअतल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथु काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।

अबला अरमुस बाबत ईरान ऐं अवान पारां ठहियल कमेटी जो पहिरियों इजलास अबला अरमुस बाबत गॾियल मुशावरत सां फ़ैसला करण ते इतफ़ाक़ ईरानी नायब परॾेही वज़ीर क़ासिम ग़रीबाबादी ईरानी वफ़द जी क़यादत कई अवान जो नायब परॾेही वज़ीर वफ़द सां गॾु ॻाल्हियुनि में शरीक थियो क़ासिम ग़रीबाबादी चयो आहे त गॾिजाणी में इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे तहत सामूंडी रियासतनि जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं हक़नि जी रोशनी में अबला अरमुस जे मुस्तक़बिल ऐं इंतिज़ाम बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं।

ईरान ऐं अमरीका जो हिकु ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़ु। अमरीकी मीडिया जे दावा, अमरीकी मीडिया मूजिबि तेहरान हिकु ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ु कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो महिवर अपने हरमूस हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ामती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल माहिदे जी भजकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबब ख़िते में अमन ऐं इस्तेकाम बहाल न थी रहियो आहे। माहिदे ते नेक नियती सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भजकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसिला कदम खया वेंदा।

ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर से ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करने मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान है कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थे घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है पेरेन के खबरदार क्यों था हदन में रहे मुस्तबिल से रांद रखे दे ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न कर वे।

सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जो इजलास। टैक्स चोरी बाबति ग़लति ॼाण ॾियण ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। एफ़ पी आर अमलदारनि खे इजलास खां ॿाहिरि कढी छॾियो।

एफबीआर के तमाक बाबत टैक्स ते मुकमल जाने देने जी हिदायत। कमेटी चेयरमैन सैफुल लाबड़ो चयो त टिन खां टिन आफिसरन मुल्क जो बेड़ो बोड़े छडियो आहे। सेनेटर तलहा महमूद चयो त पंज आफिसर केड़ा आहिनि। सैफुल लाबड़ो वराणियो त हुक्मरान पंज आफिसर पंजाब मां पाण सां गॾु खणी आया आहिनि।

सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबत सिंध हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन जी CCA 2024 के पेपर से समूरो रिकॉर्ड सील कर पेश करने हुकुम दिनों हो।

खैरपुर के कच्चे में कोराई बिरादरी की बिन दुरियन में जेड़ो बजना कतल एक जख्मी पुलो थाने की हद गोठ कोराई में कोराई बिरादरी की बिन दुरियन में मामूली गाल जेड़ो थो फायरिंग में रोशन है करावड़ कोराई मारजी वो मोहम्मद सिद्दीक कोराई जख्मी थो दुरियन में चिकटाण वही वही।

सिंधवे पाणी कोठ ख़िलाफ़ आबादगढ़ सरापा एहतजाज, कुंडरी, दोदापुर ऐं मीरपुर भटौरे में धरणा। नबीसर खां पाणी कोठ ख़िलाफ़ निकतल आबादगारनि जो प्यादल मार्च कुंडरी पहुतो। आबपाशी ऑफिस अॻियां धरणो। दोदापुर में बि आबादगारनि पारां पाणी कोठ ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर भटौरे में आबादगारनि पाणी कोट सजावल रोड ते धरणो हयो, पाणी कोट ख़तमु करण जो मुतालबो।

0: हैदराबाद भरसा सिंधु दरिया में एक ढी दौरान टिन जणन जा लाश रत सुणप न थी सकी। पुलिस मूजिब लाश लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 दड़े मियाँ गोठ ए कोटड़ी रेलवे पुल भरसा सिंधु दरिया में मिलिया पोतियन जो उम्र लगभग 30-40 साल के विच में आन जिन्हीं लाशन की सुणप न थी सकी है। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में रोड हादसों के नतीजे में एक औरत समेत 4 जणा फौत। गंबट में कौमी शाहरा से ट्रक जो मोटरसाइकिल के टक्कर नारी फिजा खास कर हयाती विजाए वेठी अलायार जख्मी थो। कश्मीर में टायर यार्ड टुटण सबब मस्ता पीएस फीडर में किरी पई ड्राइवर अली हसन उगाई फौत। कराची के बल्दिया वारे इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी जो मोटरसाइकिल के पी ए पुट फौत। पोतियन की सुणप अब्दुल मजीद ए संदस पुट अब्दुल जब्बार के नालन से कई वही।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार कैरियर मौके पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहतू रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करो, अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।